गए मशकत का नानक ते मुख उजले किती छुटी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजेवा करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटे दिन सुरैना रे मन गुरमिल का सवारे रहाओ एओ संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाई पी आवै इहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे।

दर्शन प्यासी दिन सुरात, चितवा अन दिन नीत, खोल कपट गुरमेलिया, नानक हर संग मीत। अज दा ए पावन श्री मुख वाक पंचम गुरदेव शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी दी पावन रसना तों उचारण होया है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 703 तों आरंभ हो के 704 ते संपूर्ण हुंदा है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम

देह देह दात करे दातार, फेर के अगे रखी है जित दिसै दरबार, मुहों के बोलन बोली है जित सुन तरी।

निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावी है गुणी निदान, गावी है सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया कायक दाता, सो मैं विसर ना जाई, तीर्थ नावा जित सपावा, विण भाणे के नाए करी, जेती सिरठ उपाई वेखा, विण करमा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल भख खाहे, असंख निंदक सिर करह पा।

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे।

तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवे निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का अखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते वर में घाड़त घड़ीएह, रूप रंग के वेस, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरेंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कुड आनंद, शर्म खंड की वाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया न जाहे, जे को कह पिछे पछताए, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध,

सदा सर्वदारिद सिद्धिंग निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख करमं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रमान देव अपेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद सेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जत्र तत्र दिशा विशा।

आप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं अवगणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत अभूत अलख अभेस अंग राग ना रंग जाकै जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन भंगन आत्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानही जे वे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाक है नेत भक्त नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मद पार छंद तुआ प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन भंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश।

देहांत है के राज करहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र धान्य के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के

सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भोख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, के सर्वत्र जाप्या, के सर्वत्र थाप्या, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कलीम है, के परमंग फहीम है, के आकल अलाम है, के साहिब कलाम है, के हुसनल वजू है, तमामुल रुजू है, हमेशुल सलाम है, सलीखत मुदाम है, गनीमुल शिकस्त है, गरीबुल परस्त है, बिलंदुल मकान है, जमीनुल जमान है, तमीजुल तमाम है, रजूअल निदान है, हरीफुल अजीम है, रजायक यकीन है, अनेकुल तरंग है, भेद है, पंग है, अजीजुल निवाज है, गनीमुल खराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रपुक्त प्रभा है, सुयुक्त सुधा है, सदैवं स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैवल काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओंगाद रूपे नाद स्वरूप है, नंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध्य अगंजे अगाधे सुपंग सर्व भागे सु सर्व अनुराग है, त्रिभुक्त स्वरूप है, शज है, शूत है, के नरकं प्रणास है, पृथ्वील प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विपुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अपंग है।

परमवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार सार की धार पुछैया तोर तदेश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिरनायक जाचिक अनेक सो एक दिवैया दान वदेव फनेंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराध पुजौन त्रिलोक को राज करेंगे कोटिश नानक जाद कदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पात

बैठ रहे हो भक ध्यान लगायो, नहात फिरो लिए सात समुद्रन, लोग गयो पर लोग गवायो, बास कियो बिखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साज कहो सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, काहूल पाहन पूज तरयो सिर, काहूल लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पछा को सीस निवायो, को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो, को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह।

ना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम का वहो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी वसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब वैरन को आज संगरिय। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्रीयस तो जुजू करी और अच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाये प्यारे। दीन बांध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल

कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटों जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल।

तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुरप्रसादी हर मन वस्या, पूर्व लिखिया पाया। कह नानके ओ शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम्हें जो तरक तरी, हर बिनवर न देखो कोई, हर बिनवर न देखो कोई। नदरी हर निहालिया हो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझया जा वेखा हर एक है, हर बिना वरना जा कोई। कह नानक ए नेत्र अंध से, सतगुर मिले दिव दृष्ट होई। ए श्रवण मेरे हो सच सुनने नो पठाए, सच सुनने नो पठाए शरीर लाए। सुनो सत बाणी, सुनो सत बाणी जित सुनी, मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी। सच अलख बिडाणी ताकी गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो भाओ, सच सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पौन वजाया वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया, तै अनेक रूप नाओ नव निध तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पौन बजाया। एहो साचा सोहिला साचा कर गावो, गावो त सोहिला कर साचा, जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जात उद भावे, गुरमुख जना बुझावे। ए सच सबना का खासम है, जिस बख्शे सो जन पावे। कह नानक सच सोहिला सचै कर गावे, आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सत।

दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अर्शों कुरसों चट्टी है।

सचे तुध अखै लख करोड़, सचे सब तान सचे सब जोर, सची तेरी सिफत सची सालाहा।

उपाय का लिखना मैं धर्म बहालिया उथ सच्चाई सच निबड़ा चुन वाकड़े जमा लिया थाउन पायन कूड़े यार मुख काले दुजिक चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए स्ठगन वाले।

रात चितवाऊं अनदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। दर्शन प्यासी दिन सुरात चितवाऊं अनदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। छंत सुन यार हमारे सज्जन एक करों बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी।

अब परवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो हर पहलड़ी लाभ परवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ो हर नाम तियावो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूरा आराधो सब किल विख पाप गवाया सहज आनंद हुआ वडभागी मन हर हर मीठा लाया जन कह नानक लाव पहली आरंभ काज रचाया जन कह नानक लाव पहली आरंभ काज रचाया। हाँ जी मत्था टेको।

गाया हर विखह राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहया पार पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाई

संत जना हर मेल हर पाया वड भागिया बलराम जीओ निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी

गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने,

गुण एहो होर नाहि कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसार है ती कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा,

राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह तुद जी,

खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे कर है सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो ताओ भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हाओ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा कर है तिन नाम रतन पाया।

खेल विजोग मिल विछोड़या संजोगी मेल जिसनो तू जाना हे सोई जन जाना हर गुण सद ही आख वखाना जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए।

महला पहिला तित सर वरड़ भई ले निवासा पानी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चाला हम देखा तह डूबी अले मन एक ना चेतस मूड मना हर बिसरत।

बिनती चाओ पई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहै हमारा, अपना जान करो प्रत पारा।

हरण कौ आज संघरिया, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊ, जो बार चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सतर हमारे मारिया। आप हाथ दै मुझै उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझु करिया हो रच्छा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता।

काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकरख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह धार सबहू, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निरिबकार निरलंभ, आदि अनिल अनाद असंभ।

वेदना जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपुनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जीरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भाव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रान काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो, ताके ताप तनक मह हारे हो। रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट छाह छुवे सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा।

आई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दोता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार उह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडे आईया कहे नानक सुनहो संतहो शब्द धरहु प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया धुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे अनद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वे सूरे।

संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब आधारो। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका हुए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख और धारो।